हलू हलू उघड़े डोले पाही तो कबीर पाही तो कबीर बिनोलिया चेला गेला सखा रघु सखा रघु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त

0: पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ

0: जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, इंडियन नेवी टू इंडक्ट रिकॉर्ड 18 वॉरशिप्स इन 2026, मार्किंग लार्जेस्ट सिंगल ईयर फोर्स एक्सपेंशन इन इट्स हिस्ट्री। Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Good morning, Mumbai. एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और ढेर सारे नई बातें लेकर हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। मुंबई की सुबह, लोकल की रफ्तार और लाखों लोगों की सपनों की सवारी। किसी का दफ्तर जाने का पहला दिन, किसी का रोज का सफर और कोई ट्रेन में आंखें बंद करके दो मिनट की नींद पूरी कर रहा है, तो कोई कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। लोकल में सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि हर दिन हजारों कहानियों से मिलना है। और इन्हीं छोटी छोटी कहानियों के

साथ आज बात होगी मुंबई की, मुंबई वालों की और उन ख्यालों की जो लोकल के सफर में अक्सर हमारे मन में आते हैं। तो चलिए अपनी सुबह को बनाते हैं थोड़ा और खास और शुरू करते हैं आज का मस्त मुंबई।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हमें गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं, तो चलिए कुछ दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और उन्होंने एक फ़ोटो भेजी है जिसमें कुछ सब्जियाँ की फ़ोटो है, उसमें मुझे गोभी, टमाटर और करेला भी दिख रहा है। और उसके बाद प्रणव शिंदे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और वो बोलते हैं पटरी पर

औरतें ये सिर्फ ट्रेन नहीं, मुंबई के हर इंसान की धड़कन है। लाख मुश्किलें आए राहों में, मगर ये लोकल ही इस शहर का जीवन है। अजनबी हैं सब, फिर भी एक साथ चलते हैं। यहाँ रोज नए चेहरे, नए ख्वाब मिलते हैं। धक्के तो बहुत हैं इस लोकल के सफर में, पर इसी भीड़ में जिंदगी के असली रंग खिलते हैं। वाह क्या बात है। प्रदीप जी भी हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, दत्ता राय भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। राकेश माथुर जी गुड मॉर्निंग, विजेंद्र खटोल जी गुड मॉर्निंग, महेश, प्रमोद, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए एक किस्सा आपसे शेयर करते हैं। एक बार लोकल ट्रेन में, शाम की लोकल थी, ऑफिस का समय खत्म हो चुका था और ट्रेन हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। और फिर अमित रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा। कुछ देर बाद उसे खिड़की के पास सीट मिल गई। अगले स्टेशन पर एक लड़की चढ़ी। अमित ने देखा कि वो लगातार फोन पर किसी को कॉल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद लड़की ने फोन जेब में रखा और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। अमित ने पूछा, सब ठीक है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस थोड़ा लेट हो गया। अगले स्टेशन पर लड़की उतर गई। अगले दिन वही लड़की फिर से उसी डिब्बे में आई। इस बार उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था। वो सीधे अमित के पास आई और बोली, कल आपने मुझे पूछा था ना, सब ठीक है? अमित बोला, हाँ। लड़की ने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाया और बोला, और कि कल मैं परेशान थी क्योंकि मेरे पापा अस्पताल में थे, रात को उनका ऑपरेशन हुआ और अभी वो ठीक है। आज सबसे पहले आपको थैंक यू कहना था, क्योंकि कल उस पूरी भीड़ में आप अकेले इंसान थे जिसने पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अमित कुछ कह नहीं पाया और सोचता रहा, मुंबई में हम रोज हजारों लोगों के बीच सफ़र करते हैं, किसी का नाम नहीं जानते, किसी की कहानी नहीं जानते, फिर भी कभी कभी एक छोटा सा सवाल किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो अगली बार लोकल में किसी का चेहरा थोड़ा परेशान दिखे, बस इतना पूछ लीजिए, सब ठीक है? और अगर कोई किस्सा आपका भी जुड़ा है लोकल ट्रेन में, तो हमसे शेयर करिए और हम उसे शामिल करेंगे। मैं हूँ आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। सुनते हैं अगले कुछ बेहतरीन गाने।

दोस्तों, और भी काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अपने अपने भेज रहे हैं मैसेज। शरद हार्दे जी बोल रहे हैं, हम कभी मुंबई आए नहीं, ना कभी लोकल में बैठे, लेकिन आप जो कहते हैं हम उसे महसूस करते हैं। वो गांव में किसान हैं और आपको मौका मिलेगा तो मुंबई आएंगे, ऐसा वो कहते हैं। शरद हार्दे जी, बिल्कुल मौका मिले तो आइए, और सपनों के शहर मुंबई में आइए। और रजनीकांत भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ओजस्वी जी भी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। मिलिन जी भी कह रहे हैं कि बढ़िया गाने, आपका नाम नहीं बराबर समझे। मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन चौबे मेरा पूरा नाम है, और इनको हम दोनों दो प्रेमी होगा तुमसे प्यारा कौन, काफ़ी अच्छा। हाँ, अभी मैं ये गाना भी प्ले करूँगा आपके लिए। और प्रमोद जी कह रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया, लीजिए प्रमोद जी, मैंने आपका नाम ले लिया। अच्छा, प्रमोद दो हैं, एक प्रमोद चिंचोलकर जी हैं और एक प्रमोद कर खानिस। लीजिए जी, आपका नाम भी ले लिया हमने। दीपा पालकर जी भी हमें गुड मॉर्निंग बोल रही हैं और लोकल के बारे में कुछ फरमा रही हैं। लोकल के प्रवास में स्वेटर मफलर बुनती रहती थी, जब मैं गरीब परिस्थिति से गुजर रही थी, गम में बुने हुए स्वेटर, बच्चे के बने हुए कपड़े लेकर जाती थी। लोकल के सह प्रवासी ने मेरे ये बुने हुए कपड़े खरीद कर मुझे आर्थिक मदद की और मैंने गरीबी का सामना किया। लोकल ट्रेन को शुक्रिया बोलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लोकल ट्रेन के ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। फिरोज़ जी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। विजेंद्र खटोल जी भी अपने फ़ोटो भेजे हैं, वो नींबू की खेती की फ़ोटो भेजे, बहुत सारे नींबू हैं उसमें, बहुत अच्छा खेत है सर आपका। यशवंत जी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो चलिए अभी कुछ और गाने सुनते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे गाने अभी मेरे लिस्ट में हैं, और एक के बाद एक मैं उसको प्ले करूँगा।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई सिर्फ एफएम रेनबो मुंबई पर, और मेरा नाम है रॉबिन चौबे। मुंबई की सुबह है, ट्रैफिक है, लोकल की रफ्तार है, और आपके साथ है मस्त मुंबई। लेकिन इस रफ्तार के बीच एक आवाज़ ऐसी है, उसे सुनकर मूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कभी प्यार की याद आती है, कभी दोस्तों की, और कभी बस बीते हुए दिनों की। और आज उस आवाज़ वाले कलाकार का जन्मदिन है। चलिए आपके लिए एक हिंट। तन्हा दिल से लेकर जब से तेरे नैना तक, इस आवाज ने अलग अलग रंगों से हमारा साथ दिया। जी हाँ, आज बर्थडे है शान का। आकाशवाणी के परिवार और आप सभी की ओर से शान जी को जन्मदिन की बधाई। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज में कुछ बेहतरीन गाने।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, एंड व्हाट अ गोल्डन मॉर्निंग इट हैज बीन शौर्य। और ये सुबह, ये स्वर्णिम

0: सुबह आई है भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत, तो उसके बारे में और दिन अभी तक जो जो कुछ हो चुका है, जो मेडल्स, जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उन सब का अपडेट हम आपको देंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं उस स्वर्णिम सफलता से, चिकिता तानिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को 238 और 234 से हराया। भारत का स्कोर रहा 238, चीन का 234। 238 का जो स्कोर है वो साउथ कोरिया के साथ जॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और इसके साथ ही लगातार दो एशियन गेम्स में इस इवेंट में गोल्ड जीता है भारत ने और इस जीत के साथ इस एशियन गेम्स में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 7। इसके पहले आज सुबह ही सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था भारत ने। वहीं कंपाउंड मिक्स टीम के सेमीफाइनल में चिकिता तानिपार्थी और साहिल जाधव ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया से होगा और इसके बाद होगा कंपाउंड मेंस टीम सेमीफाइनल, जिसमें कुशाल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी दिखाई देगी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इन तीनों ही इवेंट्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है।
1: एब्सोल्युटली एंड एक्चुअली इंडिया टेकिंग ऑन कोरिया राइट नाउ एज वी go through this update and it's a brilliant final that's going on right now. India doing really well, so another goal probably loading in compound mixed team. So in compound archery, obviously India are a powerhouse, and as you rightly pointed out, 3 goals up for grabs and we are the defending champions in all 3. So today is looking up since the morning for India. Right now, as we can see, India have shot perfect 10s till now on 80, while Korea are struggling a little bit, they're on 78. Meanwhile, also in squash, the women have reached the semi-finals by defeating Singapore, so another medal loading. There's a very important day today for India, action-packed day, as you rightly pointed out, and we also have LA qualification up for grabs. As we all know, compound mixed team will be making its debut at the Los Angeles Olympics, and whoever wins this match goes through directly as qualifiers for that prestigious Olympics debut. So many things up for grabs here right now.
0: जी, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं तो ट्रैप मिक्स टीम के इवेंट में भी केनन चेन्नई और नीरू ढांडा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। वहीं मेंस कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, हितेश केवट नहीं कर पाई, वो 14वें स्थान पर रहे। वहीं महिलाओं की कैनो सिंगल में पल्लवी जगताप 8वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, रीना सेन 9वें स्थान पर रही और क्वालिफाई नहीं कर पाई।
1: And wrestling action has also begun, as we all know. And again, India are a powerhouse in wrestling. And some of the results that have come in, we can tell you right now. And we are doing really well in wrestling as well. Sunil Kumar, of course, he began with a victory in his category. But still early days in wrestling, obviously. A lot of events still left. Sunil lost ultimately to Yoshida Taizo of Japan in the semi-finals. So a good start, mixed start there for India in wrestling.
0: जूडो में अस्मिता ने वियतनाम की हा नोकची को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर गई हैं। वहीं टेनिस में डी सुरेश का मुकाबला जारी है चाइनीज ताइपेई के चुन सेन सेंग से। पहला सेट सुरेश हार चुके हैं 3-6 से और दूसरा सेट बराबरी पर चल रहा है।
1: राइट, एंड सो एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर updates, we must also remind our listeners that a very important hockey semi-final is also going to take place today. India taking on South Korea again. Los Angeles Olympics qualification up for grabs. So lots happening, medals up, loading for India. As we can see, India right now in pole position to win the gold medal in the mixed team archery recurve event. So let's see what happens there. Fingers crossed.
0: बिल्कुल।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मेरा अपना है। एक बार की बात है, मैं लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने देखा एक अंकल मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन काफ़ी देर तक वो मुझे ही लगातार देख रहे थे। कुछ देर बाद उनके पास एक सीट खाली हुई,

मैं वहां बैठ गया, लेकिन वो अभी भी मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या बात है अंकल? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ट्रेन का आखिरी स्टेशन आया और मैं उतर ही रहा था कि अचानक वो मेरे पास आए और बोले, बेटा तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे से बहुत मिलता है। मैंने पूछा, आपका बेटा अभी कहाँ है? वो थोड़ा चुप हो गए, फिर बोले, बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं शॉक हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कि मैं उन्हें क्या बोलूं। और फिर मैंने उन्हें गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे आभास हो रहा था कि वो मुझ में अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो ब्लेसिंग्स ऐसी थी जैसे कोई पिता अपने बेटे को देता है। और आज भी जब भी उस किस्से को मैं याद करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं।

दोस्तों, मुंबई के लोग रोज़ घंटों लोकल में सफ़र करते हैं। एक ही डिब्बा, वही चेहरे, वही समय, और धीरे धीरे यही अनजान चेहरे बन जाते हैं ट्रेन फ्रेंड्स। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में थी। सोहैब अंसारी नाम के एक व्यक्ति जब मुंबई छोड़कर दूसरे शहर जाने वाले थे, तो उनके ट्रेन फ्रेंड्स ने उन्हें एक ऐसी विदाई दी जिनकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग कभी उनके लिए बहुत अजनबी थे, जो सिर्फ रोज़ एक ही डिब्बे में सफ़र करते थे, उन्होंने चलती लोकल ट्रेन के अंदर उनके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रख दी और उन्हें विदा किया। यही है मुंबई लोकल के इंसानी रिश्तों के लिए सबसे खूबसूरत मिसाल। तो चलिए कुछ और गाने सुनते हैं

तो दोस्तों रफू चक्कर के ये मस्ती भरे गाने के साथ समय हो रहा है मस्त मुंबई को विदा करने का। और एक बात फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि मुंबई के लोकल सिर्फ एक ट्रेन नहीं, अपने आप में एक पूरी दुनिया है। कभी कभी रोज़ एक ही डिब्बे में सफ़र करने वाले लोग इतने अपने हो जाते हैं कि नाम तक पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक स्टेशन पर वो ना दिखे तो मन कहता है आज अपने वाले कहाँ हैं। यही तो है मुंबई के लोकल। भीड़ बहुत है लेकिन इसी भीड़ में छोटी छोटी अपनी कहानियाँ भी हैं। आपसे मिलेंगे समाचार के बाद अगले कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते भारत। इस गाने के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो मुंबई। सुनते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष 18 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत 6,728 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। इस राशि का इस्तेमाल जल संरक्षण, खेती से जुड़ी सुविधाएं और गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। मुंबई के कुछ हिस्सों में कल शाम तेज बारिश हुई, जिससे अंधेरी समेत सबवे समेत निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। अधिकारियों के अनुसार मुंबई शहर की तुलना में पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में अधिक बारिश हुई, जबकि दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में खेल समाचार। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वैनम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतीक्षा प्रदीप की भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराया। समाचार समाप्त।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों, नई सुबह, नई उम्मीदें और कुछ ऐसी कहानियां जो हमें मुस्कुराने के साथ साथ गर्व भी महसूस कराती हैं।

आज नमस्ते भारत में बात होगी उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और हौसले से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई, और उन बच्चों की भी जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की मिसाल कायम की। क्योंकि उपलब्धि उम्र की मोहताज नहीं होती। कभी एक बेटी इतिहास बनाती है तो कभी एक बच्चा अपनी प्रतिभा से सबको चौंका देता है। तो तैयार हो जाइए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, उपलब्धियों और मुस्कुराती सुबह के लिए।

अपने नाम किया। वहीं केरल के राहुल जॉन अजू ने महज 9 साल की उम्र में AI सीखना शुरू किया, 12 साल की उम्र में अपना पहला रोबोट बनाया और आज 16 साल की उम्र में 15 AI टूल्स विकसित करने के साथ करीब 5 लाख लोगों को AI की ट्रेनिंग दे चुके हैं। और मुंबई के तिलक मेहता ने सिर्फ 13 साल की उम्र में पेपर्स एंड पार्सल्स नाम से अपना कोरियर स्टार्टअप शुरू किया। मुंबई के मशहूर डब्बा वालों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और छोटे पार्सल्स की सेम डे डिलीवरी का मॉडल तैयार किया। तो बाल जगत के दोस्तों, इन तीनों की कहानियां हमें एक शानदार बात याद दिलाती है, प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे पहचानने, निखारने और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं हूं RJ रॉबिन चौबे, आप सुन रहे हैं FM रेनबो मुंबई, प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते भारत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत और मैं हूं आरजे रॉबिन चौबे। कुछ कहानियां सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं होती, वो होती हैं हिम्मत, वापसी और खुद पर भरोसा रखने की। नाम है शेफाली वर्मा। भारतीय क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिन्होंने छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई और 2023 में भारत को पहला ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम की कप्तानी की। फिर आया 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी से प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत ने 52 रन से जीतकर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया और हाल ही में 2026 के वुमेन्स एशिया कप और एशियन गेम्स के फाइनल में भी शेफाली ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। दोस्तों, असली हुनर वही है जो मौका मिलने पर अपनी पूरी चमक दिखाए।

0: एशियन गेम्स 2021 आईजी नगोया।
1: A triumphant good morning to all our listeners to our daily updates of the 20th Asian Games being held at Aichi Nagoya in Japan. You're with Shaurya Chaudhary and Mudita. And India has made it 2-2 in compound archery today with Sahil Jadhav and trailblazing youngster Chakita, fresh off her women's compound team world record and gold medal, beating the high-fangled South Korean pair Yongyeon Park and Yonghee Choi in a tense shoot-off after the two teams finished tied at 157 after the fourth end in the final, and they have won gold. And by virtue of this fantastic victory, the Indian pair have qualified directly for the LA Games, where compound archery will be making its debut through the mixed team event. So great news, 2-2. मुदिता
2: बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें कि इससे पहले आज सुबह महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय टिकनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को हराया था। और अब से कुछ ही देर में कंपाउंड मेन्स टीम के सेमीफाइनल भी शुरू होने वाले हैं। अगली खबर मुक्केबाजी से है। बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल प्रिया का मुकाबला चीन की चेंग्यू यान के साथ जारी है, और इसके बाद लवलीना बोरगोहेन सामना करेंगी कजाकिस्तान की बोगडानोवा नतालिया का। और वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में कपिल पोखरिया मुकाबला करेंगे तुराबेक हबीबुल्लाएव उज्बेकिस्तान के, जो मुक्केबाज हैं उनका।
1: यस, लवलीना बोरगोहेन सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड बॉक्सर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट, एंड बट देयर सम बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम द टेनिस कोर्ट। दक्षिणेश्वर सुरेश, as you were saying in the previous update at 9:30, he was taking part in the third round in the men's singles. He has gone down to Chinese Taipei's Chun Xing Seng 6-3, 6-4, but lots of other tennis action awaits us basically, because men's doubles quarterfinals are there. Yuki Bhamdi and Dakshineshwar Suresh will be in action there. And we know we won some medals in tennis last time as well in Hangzhou. And apart from shooting and obviously archery, we did pretty well in tennis as well. So let's see, there might be some medals up for grabs there, and hockey as well.
2: और टेनिस में ही अभी पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर का मुकाबला सुमित नागल का जारी है उज़्बेकिस्तान के सर्गे फोमिन के साथ। पहला सेट 1-1 से बराबरी पर चल रहा है।
1: सुमित नागल इज ऑब्वियसली आवर बेस्ट सिंगल्स होप। ही वाज आल्सो देयर इन हंगजो एंड ही was doing pretty well before getting knocked out, but Sumit Nagal obviously is the celebrated tennis player from our contingent there. And obviously boxing, as you were saying, is very important, and there's also judo action going on and wrestling action as well, and these are also medal hopes for us. मुदिता
2: जी बिल्कुल, कुश्ती में मेंस ग्रेको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन उनका कांस्य पदक का मुकाबला शौर्य अभी बाकी है, जहां वो फिर से पूरा जोर लगाएंगे। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया उत्तर कोरिया की पाक सोलगम से हार गई, लेकिन वो भी अभी कांस्य जीत सकती हैं, लेकिन उसके लिए पाक सोलगम को फाइनल में पहुंचना होगा।
1: पाक सोलगम हैज एक्चुअली एंटर्ड द फाइनल, एंड दैट मींस देयर इज अ चांस फॉर अ ब्रॉन्ज मेडल देयर।

0: through repechage. Meanwhile, Priya Panghas is actually trailing right now. Let's see what happens. In judo, I think Ashmita has also lost in the quarterfinals. Action coming thick and fast. Lots of things happening here at Aichi Nagoya. But the good thing is India is moving up the medals tally.
1: जी बिल्कुल, मेडल्स टैली में भी भारत ने किया है. इसके अलावा कैनो स्लालम जैसे खेल में भी इतिहास रच रहे हैं. प्रद्युम सिंह जो है वो पुरुषों की कयाक सिंगल के फाइनल में पहुंच गए हैं. वहीं महिलाओं में पल्लवी जगताप विमेंस कैनो सिंगल के फाइनल में पहुंच गई हैं.
0: Great, but all our eyes will be on the hockey action later today as well. As you are also saying that compound men's team semi-finals are also going to take place today, later in the day. And I think the final of the shooting trap will also be interesting because, you know, India obviously is a powerhouse in shooting. And this time we haven't done as well as we did in Hangzhou. But a few more medals from shooting will obviously help us, you know, push up that medals tally.
1: बिल्कुल. और स्क्वाश में भी शौर्य हमने पदक पक्का किया है. भारत ने सिंगापुर पर जीत के साथ महिला टीम मेडल पक्का किया है. तन्वी खन्ना ने 3-1 से और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई है. तो इसके साथ स्क्वाश में भी अब एक मेडल आना है. मेडल का रंग क्या होगा वो देखना बाकी है. बिल्कुल उसी
0: तरह गंगा इज गोइंग ऑन राइट, हर बाउट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. आई थिंक शी इज ट्रेलिंग बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. एज वी नो इन बॉक्सिंग, if we reach the semi finals you are assured of a bronze medal. So that way that's a good news for India there. And boxing and wrestling, these combat sports, will obviously provide us with some medals and push us up that medals tally.
1: बिल्कुल, बॉक्सिंग से फिलहाल हमें वाकई मेडल्स की उम्मीद है. लवलीना का मुकाबला जहाँ चल रहा है हांगजो में, इसी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था शौर्य. तो इस बार बिल्कुल वो मेडल का रंग बदलना चाहेंगी.
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो लवलीना इज अ नेम वी लुक अप टू दिस टाइम. ऑब्वियसली यू नो लवलीना इज रियली गियर्ड अप फॉर दिस एशियन गेम्स. शी हैज प्रिपेयर्ड रियली वेल एंड वी आर होपिंग फॉर दैट elusive gold medal. She won a silver, as you said lightly, in the last edition of the Asian Games in her category. And in the same category, she's going to take part this time. She's already taking part. She's doing pretty well. She's in form. So we can obviously hope for a gold medal. So that's it for our update for 10:30. We'll be back at 11:30 a.m. for our next update. Lots more medal actions and lots more combat actions from the ring. So bringing that to you will be Mudita and Shorya at 11:30 a.m. Till then, it's a goodbye. Keep cheering for Bharat.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: दोस्तों, खेल के एशियन गेम्स के अपडेट्स के बाद आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय खिलाड़ी और पदक लेके आए, स्वर्ण पदक लेके आए और पंक और अंक तालिका में हम और ऊपर पहुंचे. तो चलिए गाने सुनते हैं. कुछ बेहतरीन गाने मैंने लाइनअप किए हुए हैं और एक के बाद एक उन्हें सुनते हैं.

दोस्तों आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत एफएम रेनबो मुंबई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन चौबे। सोचिए सामने 29,000 फीट से भी ऊंची एक चोटी हो, चारों तरफ बर्फ हो और मौसम हर पल चुनौती दे रहा हो, लेकिन एक महिला ने तय कर लिया था वो यही नहीं रुकेगी। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास बना दिया। वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह सफर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा और बछेंद्री पाल की कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है, रास्ता कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर कदम रुके नहीं तो मंजिल दूर नहीं रहती।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेनबो मुंबई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन चौबे। कुछ कलाकार पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते, वो अपने किरदार को इतना सच्चा बनाते हैं कि सालों बाद भी वो याद रहता है। ऐसी ही एक अदाकारा थी स्मिता पाटिल। पुणे से शुरू हुआ सफर पहले टेलीविजन पर समाचार वाचिका, फिर श्याम बेनेगल की फिल्मों से सिनेमा तक पहुंची। मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र, अर्थ और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग और बेहद मजबूत

किरदार निभाए। 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा की यादगार विरासत का हिस्सा है। तो आज उनकी याद में सुनते हैं उनके कुछ बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का नमस्ते भारत से, और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए एफएम रेनबो मुंबई, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी अगर शिकायत भी है तो आप हमारे फेसबुक पेज एफएम रेनबो के उस पे, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप कर सकते हैं मैसेज, और मुझे भी आप रॉबिन चौबे के नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला जो भी हैंडल है, आप आपके सुझाव, आपके जो भी शिकायत भी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सुनते रहिए एफएम रेनबो मुंबई, और बहुत जल्द आपसे जुड़ेंगे आरजे रविशंकर। टेक केयर एंड बाय बाय।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 11 बज चुके हैं। पेश है अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। समाचार में आगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में गणेश उत्सव से जुड़ी कथाओं और परंपराओं से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म bappa.org की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मंच पर महाराष्ट्र के करीब 40,000 गांवों में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव, गणेश प्रतिमाओं और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियां साझा की जाएंगी। समाचार में आगे, खेल। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य पदकों सहित कुल 54 पदकों के साथ शीर्ष 10 में शामिल है। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। पेश है अगला कार्यक्रम ब्रेक फ्री।
2: मैंने

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। अभी आपने सुना फिल्म आनंद से ये नगमा। गीत के बोल लिखे थे योगेश साहब ने और संगीत सलील चौधरी जी का था और गायक थे हम सभी के प्रिय अजीज मुकेश जी। और अभी फिल्म आनंद, जब भी फिल्म आनंद का जिक्र होगा तो ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र होगा और आज हम उनका ही जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज 30 सितंबर है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1922 में। तो बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। अगली पेशकश मानड़े साहब की आवाज़ आप तक।

जी हाँ, सुबह के 11:21 हो रहे हैं, कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। आज हम ब्रेक फ्री में ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद कर रहे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले अभी जो आपने गाना सुना, ये फिल्म गुड्डी से हमने आपको सुनाया, गुलजार साहब के लिखे बोल थे और वसंत देसाई साहब ने इसे कंपोज किया था, वाणी जयराम इनके गायक थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऋषिकेश मुखर्जी को स्टार मेकर के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर व जया भादुड़ी जैसे सितारों को फिल्म इंडस्ट्री में कहे तो स्थापित किया। ऋषिदा का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने स्नातक की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने गणित और विज्ञान के अध्यापक के रूप में भी काम किया। 40 के दशक में ऋषिदा ने अपने सिने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन की। न्यू थिएटर में उनकी मुलाकात जाने वाले फिल्म संपादक सुबोध मित्र से हुई। उनके साथ रहकर ऋषिदा ने फिल्म संपादन का काम सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी फिल्मकार विमल रॉय के साथ सहायक के तौर पर काम करने लगे। इस तरह से ऋषिदा का करियर शुरू हुआ बतौर असिस्टेंट। तो बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश लता जी की आवाज़, हम उन्हीं के फिल्मों के गाने सुना रहे हैं अभी आप तक आपको, तो बने रहिए FM के रेनबो के साथ और उनके गाने सुनिए। ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ आप तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और ऋषिदा को हम ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद कर रहे हैं। आज उनका जन्म जयंती है। अभी आपने फिल्म अभिमान से ये गीत सुना, लता जी की आवाज़, मजरूह साहब के लिखे बोल और मोहम्मद रफ़ी साहब भी साथ में शामिल थे। अभी कुछ ही क्षणों के बाद एफएम अपडेट्स होगा एशियन गेम्स 2026 के बारे में और उसके बाद ब्रेक फ्री कंटिन्यू रहेगा। 5 मिनट का ये अपडेट होगा, तो बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। और ख़ास तौर पर हमारे साथ जो श्रोता जुड़ चुके हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र इस वक्त ज़रूर कर देते हैं। संजय दर्शन जी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र घटोल जी अकोला से,

पाटिल वर्ली से, विनोद मकवाना दहीसर से, पंकज मोहट जी कार्यक्रम ब्रेक फ्री का आनंद ले रहे हैं अमरावती से, सुभाड़ा जी गुड मॉर्निंग, रविशंकर जी लिख रही हैं और साथ में दीपा पालकर जी भी मैसेज कर रही हैं, वो भी इस कार्यक्रम को फिलहाल आनंद ले रही हैं। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 के सभी ताजा अपडेट्स और खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की शौर्य जो है वो मुक्केबाजी से आई है। लवलीना बोरगोहेन पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया और इसके साथ ही उन्होंने अपना रजत पदक पक्का कर लिया है। लेकिन इस बार जो हमने पहले भी बात की थी कि वो मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेंगी, हांगझाऊ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा बॉक्सिंग में ही प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। बॉक्सिंग में एक मुकाबला अभी और होना है जो अगले अपडेट तक हम उसको लेकर के आएंगे, वो है 90 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुषों का मुकाबला जिसमें कपिल पोखरिया नजर आएंगे।
2: Absolutely, and that was a very tense bout there for Lovlina. She had to really battle through it and win by split decision 3-2, and that shows the champion's mentality. You saw that she slipped twice during that bout. She was defensive at many junctures, but in that final round, she brought out her best to take care of a very strong opponent. So yes, silver medal assured, but we'll be hoping for a gold. Meanwhile, another team that's in the final is in shooting mixed trap, where Neeru Dhanda, of course, she made history by becoming the first individual gold medalist in women's trap for India. The 26-year-old, she has teamed up with Kinan Chennai, and right now I think India are on top. Yes, Neeru and Kinan Chennai battling the weathers, battling the elements there, because you know, inclement weather in Japan, and this is an outdoor event, so mixed trap is obviously challenging. But India right now with 24 points, very close right now, but Kinan Chennai and Neeru Dhanda are first and second right now. They are just battling hard there. They qualified fourth. So, hoping for a gold there as well.
1: बिल्कुल, और स्क्वाश का मुकाबला भी जारी है। मेंस टीम क्वार्टर फाइनल में कुवैत का सामना कर रही है। अभय सिंह, वीर चोटरानी और वेलवन सिंथिल कुमार एक बार फिर से खिताब को बरकरार रखने के लिए उतरे हैं। वीर चोटरानी का मुकाबला इस वक्त जारी है बादिर अलमोगरेबी के साथ, और फिलहाल दोनों एक एक गेम जीत चुके हैं, जबकि तीसरे गेम में वीर लीड कर रहे हैं 11-0 से। महिला टीम आज पहले ही क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हरा कर अपना मेडल पक्का कर चुकी है।
2: Of course, that win against Singapore again assuring another medal from squash, where we are doing pretty well. All the big guns are there from the squash team, the stars Joshna and Anahat etc. Right, so let's take you to Kasugai Country Club Estate, where the golf events have begun. Men's individual stroke play round 1 is already completed, and Saptak Talwar 4-under is in the third position. And you know, we do well in golf in multi-nation tournaments, you know, and back in the 23rd position is Veer Ahlawat. He is 1-over, but Saptak is doing really well. Men's team, they are 3-under. The team in combined, they are in the joint 5th position. Meanwhile, the women's events are also going on, where I think Diksha Dagar is also taking part, so hope from there. But the obviously the story today is archery, you know, Okazaki Chuo Sogo Park, where 2 gold medals have come, a world record has come in compound women's and compound mixed team event. What's going on there, Mudita?
1: जी बिल्कुल, 2 गोल्ड मेडल के साथ आज कंपाउंड आर्चरी टीम ने धमाल मचा रखा है, और फिलहाल जो है अब जो मुकाबला है वो कंपाउंड मेंस टीम का है, सेमीफाइनल मुकाबला है। कुशल

सुबह के 11:40 हो रहे हैं, कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। ब्रेक फ्री में आज हम ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं के फिल्मों को गाने सुन रहे हैं। ऋषिदा ने बिमल रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, बस बतौर असिस्टेंट इसका जिक्र हमने किया। उनकी फिल्म 2 बीघा ज़मीन और देवदास का संपादन भी ऋषिदा ने ही किया। बतौर निर्देशक ऋषिदा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मुसाफिर से की। दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन और किशोर कुमार जैसे नामचीर सितारों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी सफल नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद उन्हें वर्ष 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म ऋषिकेश दा को राज कपूर साहब की फिल्म अनाड़ी का निर्देशित करने का मौका मिला। फिल्म टिकट खिड़की पर हिट साबित हुई। इसके साथ ही बतौर निर्देशक ऋषिदा फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। बने रहिए FM रेनबो के साथ, अगली पेशकश आप तक लता जी की आवाज़, क्योंकि साल 1960 में जो फिल्म पर अनुराधा से हम आपको गीत सुनाने जा रहे हैं, साल 1960 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म जिसमें बलराज सहनी और लीला नायडू उन्होंने अभिनीत किया था। इस फिल्म में कहानी एक ऐसे शादीशुदा युवती पर आधारित थी जिसका पति उसे छोड़कर अपने आदर्श के निर्वाह के लिए गाँव चला जाता है। हालाँकि ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर कुछ खास कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में से सम्मानित भी किया गया।

0: जी हाँ, 11:51 हो रहे हैं। कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और ब्रेक फ्री में हम ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद कर रहे हैं। आज उनका जन्म जयंती है। वर्ष 1966 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद के जरिए ऋषिकेश मुखर्जी ने न सिर्फ जाति प्रथा और जमींदारी प्रथा पर गहरी चोट की, बल्कि एक पिता की व्यथा को भी पहली बार रुपहले पर्दे पर साकार किया। इस फिल्म में अशोक कुमार पर फिल्माया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी उन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। बिल्कुल, हम ये गाना आपको सुनाएंगे, भी प्लेलिस्ट में शामिल है। ऋषिकेश मुखर्जी साहब का जब भी जिक्र होता है या होगा, तो उन्होंने यूँ कहिए तो कई निर्माता निर्देशकों को एक राह भी दिखाई, क्योंकि जब एक निर्माता एक निर्देशक अपने कौशल के जरिए एक फिल्म के जरिए जब सामाजिक कथा व्यथा को पर्दे पर उकेरता है, तो कहीं ना कहीं अपनी वो उत्कृष्टता दर्शाता है। जिक्र जारी रहेगा, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। 11:52 हो रहा है, कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है। अगली पेशकश फिल्म चुपके चुपके से लता जी की आवाज, और सबसे पहले आपको अशोक दा पर जो फिल्माया गया था रेलगाड़ी रेलगाड़ी, वो गाना सुनाते हैं। उसके बाद फिर चुपके चुपके का भी गाना प्लेलिस्ट में शामिल है, आगे वो प्ले होगा। पहले ये गाना सुनिए।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर यात्रा।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक।

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोरनूर कोटनूर शोरनूर कोटनूर, चुक चुक चुक चुक चुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: एक सौ सात दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 12 बज चुके हैं। पेश है अभी तक के एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। सरकार ने नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड अधिसूचित किए हैं। इनके तहत 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक यात्री वाहनों के लिए ईंधन दक्षता और कार्बन उत्सर्जन की सीमाएं तय की जाएंगी। नए मानदंडों में मुख्य रूप से यात्री कारें शामिल हैं। इनमें हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमबीपी प्रमुख हैं, जिनमें चालक के अलावा 8 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। समाचार में आगे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़गाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकवादी की पहचान लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। सेना, जम्मू कश्मीर और पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। समाचार में आगे, खेल। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में एक और तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक पदक पक्का हो गया है। वैश्विक कौशल प्रतियोगिता में डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया श्रेणी में रजत पदक जीतने वाले कोविद गंगार्डे को तथा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में 3D डिजिटल गेम आर्ट श्रेणी में रजत पदक जीतने वाले हर्ष पवार को राज्य सरकार ने 3-3 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के यार्ड में खड़ी मुंबई हावड़ा ट्रेन की पेंट्री कार में आज तड़के आग लग गई। मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। 12:02 हो रहे हैं। वक्त हो चला है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे का। तो म्यूजिक कैफे में भी हम आज ऋषिकेश मुखर्जी साहब का ही जिक्र करेंगे और उन्हीं के फिल्मों के गाने आपको सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गाने बाने हैं, आपकी फरमाइशें भी लेनी है और बातें तो कुछ खास हुई नहीं अभी तक उनके बारे में, क्योंकि उनका सफ़र रहा ही इतना बेमिसाल, तो जिक्र तो करना बनता है। जन्म जयंती है आज, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। म्यूजिक कैफे का सिलसिला जारी है।

107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। कार्यक्रम म्यूजिक कैफे चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। बातें ऋषिकेश मुखर्जी साहब की कर रहे हैं हम, आज उनका जन्म जयंती है, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हीं के फिल्मों के हम आपको गाने भी सुना रहे हैं। उनके फिल्मों के गाने, उनकी फिल्में हैं भी इतनी बेमिसाल कि उनकी मिसाल तो देने वाली बात है ही। तो उनके सफर करियर सफर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म सत्यकाम। सत्यकाम ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक पर आधारित है जिसने स्वतंत्रता के बाद जैसा सपना देश के बारे में सोचा था वह पूरा नहीं हो पाता है। सिने प्रेमियों का मानना है कि यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी साहब के उत्कृष्ट फिल्मों में से एक है। जया भादुड़ी जी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्मों का बहुत ही अहम योगदान रहा है। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक फिल्म गुड्डी से मिला सन

71 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के गाने हमने आपको सुनवाए। इस फिल्म में जया जी ने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई थी जो फिल्में देखने की काफ़ी शौकीन है और अभिनेता धर्मेंद्र से प्यार करती है। अपने इस किरदार को जया भादुड़ी ने इतने चुलबुली तरीके से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। इसके बाद फिल्म गुड्डी के बाद

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोपहर के 12:28 हो रहे हैं, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे सुन रहे थे आप। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। म्यूजिक कैफे में भी हमने आज ऋषिकेश मुखर्जी साहब को याद किया उनके जन्म जयंती के अवसर पर, और अब कुछ ही क्षणों के बाद अगला कार्यक्रम पेश होगा। स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है NCERT उमंग। उसके बाद फिर 1 बजे दुपार्च्य बातम्या होगा। उसके बाद फिर 1:05 पर हम अपने स्टूडियो से हाजिर होंगे कार्यक्रम हिट हॉट लेकर के, जहां हम गायक शान पर कार्यक्रम शान पर आधारित होगा और उन्हीं के गाने हम सुनेंगे। तो बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी।
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी।
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है, लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी।
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी।
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी।
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी।
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची।

0: सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है,
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी,
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी,
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जाने।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।

0: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
1: सच्चियाकाल चाचा।
2: सच्चियाकाल।
1: छुट्टी पर आए हो?
2: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
1: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
1: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
2: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
2: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
2: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
2: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
1: जी चाचा।
3: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
0: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
3: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
0: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
3: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दें। हाँ पॉलिश दें। हाँ, और देखो क्या चमक।

0: चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
1: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
0: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
2: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
1: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
2: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखों हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
2: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
0: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं, अपने विमान को नीचे लाइए।
0: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
2: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना

0: कर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों, सेखों 102, सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 107.1 MHz आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है ये। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। वादे के मुताबिक हाजिर हूं। 1:06 हो रहे हैं और ये वक्त होता है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट का। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज हम हिट एंड हॉट में आपको शान के गाने सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं फिल्म फना से ये गाना, शान की आवाज़ बड़े ही शान से।

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। 1:15 हो रहे हैं और हम हिट एंड हॉट में बात करेंगे शांतनु मुखर्जी यानी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर शान का जिक्र करेंगे और उनके हम गाने सुनेंगे।

घर में शुरू से संगीत का माहौल होने के कारण शान का बचपन से ही संगीत की तरफ रुझान था। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में शान जी ने विज्ञापन के लिए जिंगल गाते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। पिता की मृत्यु के बाद शान जी पर अपने घर की जिम्मेवारियां आ गईं, लेकिन उन्होंने इन जिम्मेदारियों को साथ अपना पिता का सपना भी पूरा किया। कहते हैं कि शान जी ने एक बुटीक में सेल्समैन का काम भी किया। उन्होंने पैसा कमाने के लिए बच्चों को पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत जिंगल्स के साथ की, उसके बाद उन्होंने रिमिक्स और कवर वर्जन गाने शुरू किए। वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म परिंदा के लिए उन्हें एक ही लाइन गाने का अवसर मिला था। इस दौरान उन्होंने आरडी बर्मन का गाना रूप तेरा मस्ताना का रिमिक्स गाना गाया, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। आइए इस मोड़ पर सुनते हैं फिल्म 3 इडियट्स से ये नगमा।

दोपहर के 1:27 हो रहे हैं, कार्यक्रम हिट एंड हॉट चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं शांतनु मुखर्जी यानी प्रसिद्ध गायक शान के गाए हुए गीत और उन्हीं का हम फिल्मी सफ़र करियर सफ़र का जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही क्षणों बाद यानी 1:30 पर, ठीक 1:30 पर FM अपडेट्स ऑफ 20th एडिशन एशियन गेम्स का जो अपडेट्स होगा वो आपको 1:30 से आपके पास पहुंचेगा। तब तक हम हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हमारे श्रोता हमारे हम तक फरमाइशें भेज रहे हैं, कुछ श्रोताओं के फरमाइशें हमने ऑलरेडी पूरी कर भी दी है, कुछ की फरमाइशें अब पूरी होने ही वाली है और जिनकी फरमाइशें आज पूरी नहीं हो पाएगी उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में ज़रूर आपके गीतों को शामिल किया जाएगा। कुछ लिख रही हैं कि अर्पण फिल्म का गीत सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे लेकिन वो अगले कार्यक्रम में। आज हम शांतनु मुखर्जी यानी शान जी के गाए हुए गीतों को इस कार्यक्रम हिट एंड हॉट में सुनेंगे। तो अगर उनके कोई गाने आप फरमाइश कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दीजिए 8657661071। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपने फरमाइशें भेजिए, हम ज़रूर अगले कुछ मिनटों में शामिल करने की कोशिश करेंगे आपके इस गाने को। लेकिन अब वक्त हो चला है 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत मेडल टैली में एक और पायदान ऊपर चढ़कर अब सातवें स्थान पर पहुंच गया है। एक और गोल्ड हासिल किया है भारत ने और खास बात यह है श्रोताओं कि आज का हर अपडेट हमने शुरू किया है गोल्ड के साथ, स्वर्णिम सफलताओं के साथ। तो मेडल टैली में भारत अब 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 पदकों के साथ सात

सातवें स्थान पर है। शुरुआत करते हैं हम आज के इस वक्त के गोल्ड मेडल के साथ। भारतीय पुरुषों की कंपाउंड टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-237 से हराया। पहले राउंड में भारतीय तीरंदाजों ने 2-9 लगाए थे, लेकिन आखिरी 18 तीरों में परफेक्ट 10 स्कोर किया। इसके पहले सेमीफाइनल में कोरिया पर 236-229 से जीत के साथ फाइनल में भारत ने प्रवेश किया था, और इस तरह कंपाउंड टीम इवेंट में भारत ने क्लीन स्वीप किया है, जिसमें महिला टीम और मिक्स टीम के गोल्ड मेडल भी शामिल है। तो आज का दिन बेहद शानदार रहा है भारतीय तीरंदाजों के लिए। 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं उन्होंने। हम बता दें कि साहिल जाधव ने मिक्स टीम और पुरुष टीम में 2 स्वर्ण अपने नाम किए हैं। बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले में कपिल उज्बेकिस्तान के तुराबे खबीबुल्लायेव से हार गए, लेकिन लवलीना पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना बरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। इसके अलावा परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं बॉक्सिंग से। हालांकि हम बिल्कुल चाहेंगे कि मेडल का रंग सुनहरा ही हो। इसके अलावा प्रिया घनघस और नरेंद्र बेरवाल ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो कपिल का कांस्य पदक मिलाकर कुल 3 कांस्य पदक भारत ने हासिल किए हैं बॉक्सिंग में। इसके बाद स्क्वाश में भी मेंस टीम ने अपना पदक पक्का कर लिया है। भारतीय टीम ने कतर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अभय सिंह अम्मार अल्तामिमी से 3-0 से जीते, वहीं वीर चोटरानी बादेर अलमुगरेबी से 3-1 से जीत चुके हैं। महिला टीम आज सुबह ही क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हराकर पहले ही अपना मेडल पक्का कर चुकी है। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह सिंगल्स में रजत पदक पहले हासिल कर चुके हैं। टेनिस में मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई है चीन के फ्यूमन जियांग और तियान हुई झांग से। कड़े मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-6 से जीता, लेकिन दूसरा सेट वो 6-7 से हार गई और तीसरा सेट 8-10 से। लेकिन सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं पुरुष सिंगल्स में। राउंड ऑफ 16 में उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन को सीधे सेटों में उन्होंने 6-3, 6-2 से हराया, और फोमिन के खिलाफ उन्होंने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड भी 3-0 कर लिया है, और अब मेडल पक्का करने से बस 1 जीत दूर हैं सुमित नागल। इससे पहले पुरुष सिंगल के तीसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश चाइनीज ताइपे के चुन सिंह सेंग से 3-6, 4-6 से हार गए। यूके भामरी और डी सुरेश की जोड़ी अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले अब खेलेगी, और मिक्स डबल्स में यूके भामरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद आज जिस मुकाबले पे हम सब की निगाह है वो है विमेंस हॉकी का मुकाबला, जिसका पहला सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त चीन और जापान के बीच, और दोनों ही टीमें अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई हैं। दूसरा सेमीफाइनल जिस पर हमारी नज़र है वो होगा भारत का रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो हॉकी के इस मुकाबले पर हम सब की नज़र अब रहने वाली है। तो इन सब खबरों के साथ ही जो हमने फिर से बताना चाहेंगे आपको कि भारत अब मेडल टैली में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। आज 4 गोल्ड हासिल किए भारत ने, 3 हासिल किए उसमें से उन्होंने कंपाउंड आर्चरी से हमने, और उसके अलावा 1 हमने हासिल किया ट्रैप शूटिंग के मिक्स टीम इवेंट में। तो इसके साथ ही 10 गोल्ड हो गए हैं अब भारत के हिस्से में, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 मेडल हैं, और भारत है 7वें पायदान पे। कल सुबह की शुरुआत हमने की थी भारत के 12वें स्थान के साथ, शाम होते होते भारत पहुंचा था 10वें पे, आज सुबह 8वें और अब है 7वें स्थान पर भारत। तो हमारा ये सिलसिला अपडेट्स का आपके साथ जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, अगला अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर होंगे ठीक 3:30 पर। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हाजिर हैं हम गेम अपडेट्स के बाद कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर के। 1:36 हो रहे हैं, कुछ गाने की गुंजाइश बची है तो उसको हम प्ले करने जा रहे हैं और हमारे श्रोता जो फरमाइशें भेज रहे हैं उनके हम फरमाइशों को भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगली पेशकश जो हम आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो क्या फीलिंग लेकर के जा सकते हैं, उस समय क्या क्या विचार हमारे भाव हमारे जहन में चलते हैं, जरा सा हम इस गाने से समझने और जानने की कोशिश करते हैं जनाब।

1:46 हो रहे हैं, कार्यक्रम हिट एंड हॉट सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। इस कार्यक्रम में हम आपको गायक शांतनु मुखर्जी यानी शान के गाने सुना रहे हैं, उनके फिल्मी करियर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपकी फरमाइशों को भी शामिल कर रहे हैं। तो जल्दी से हम जिक्र करते हैं कि शान साहब को असली पहचान उनके लिखे गाने भूल जा और तन्हा दिल से मिली थी। उनके यह दोनों गाने 1999 में रिलीज हुए थे। शान को तन्हा दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम के लिए एमटीवी एशिया पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने 2004 में अपनी बहन के साथ मिलकर बंगाली एल्बम तुमर आकाश रिलीज किया, जिसमें उनके पिता के अप्रकाशित गाने शामिल थे। वर्ष 2006 में उन्होंने MLTR के साथ एक गाना रिलीज किया, टेक मी टू योर हार्ट। शान साहब 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से पार्श्व गायन में पदार्पण किया। इस फिल्म में उन्होंने दो गाने गाए जिसमें मुस्सु मुस्सी हासी ये गाना हमने आपको सुनाया, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत ने दर्शकों के दिल में तुरंत जगह बना ली थी। ये गीत युवाओं को काफ़ी पसंद आया था। शान साहब ने वर्ष 2000 से 2006 के बीच ZTV पर टेलीविजन शो शारेगामा पा की मेज़बानी की। गायकी के अलावा शान साहब संगीतकार, अभिनेता और टेलीविजन होस्ट की भूमिका भी निभा चुके हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड हैं। 1:47 पर अगली पेशकश आप तक बने रहिए FM रेनबो के साथ।

1:57 हो रहे हैं। कार्यक्रम हिट एंड हॉट चल रहा है और आज का कार्यक्रम आधारित था शांतनु मुखर्जी यानी शान पर। अब इस कार्यक्रम में मात्र एक गाने की गुंजाइश रह गई है, वो हम सुना रहे हैं फिल्म 10 से। साथ ही साथ मुझे यानी रविशंकर को दीजिए इजाज़त, ज़रूर मिलेंगे हम किसी न किसी मोड़ पर। तब तक बने रहिए FM रेनबो के साथ, छोड़े जा रहा हूँ इस नगमा के साथ।

स्वर्ण पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत

0: यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, में होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष पीयूष गोयल आज अमरीका में

0: G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
1: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
3: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
5: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
3: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति

0: गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुँच गया है।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किती जुनं हे गाणं आहे ना.

0: साथियों, अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स। एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स लेकर एक बार फिर से वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं अनुपम पाठक। 30 सितंबर का दिन अ गोल्डन डे फॉर इंडिया, स्वर्णिम सफलताओं का दिन। 4 गोल्ड मेडल हासिल किया आज भारत ने, 3 कंपाउंड आर्चरी में मेन्स टीम, वुमेन्स टीम और मिक्स टीम ने, और 1 ट्रैप शूटिंग में मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चिनाई ने।
2: भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में महिलाओं का सेमीफाइनल मैच बस अभी अभी शुरू हुआ है, लगभग 50 सेकंड पहले। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर जो हम आपको देना चाहते हैं, ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत के सुनील कुमार, जिन्होंने आज अपनी पहली भिड़ंत जीती थी, अगले में वो जापान के ताइजो योशिदा से हार गए थे। लेकिन जो किस्मत होती है ना, योशिदा आगे बढ़े तो सुनील को एक मौका और मिल गया रिपेचैस का, और रिपेचैस में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अभी अभी जस्ट खत्म हुए मुकाबले में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 10-0 से बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कुश्ती लड़ी इसमें, और टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से परास्त किया। और भारत के लिए आज जो पदकों का सिलसिला मुद्दा लगातार चल रहा है ना, उसमें एक पदक और जोड़ लीजिए, सुनील कुमार का ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक ग्रीको रोमन कुश्ती 87 किलोग्राम भार वर्ग में।
0: जी बिल्कुल। लेकिन वहीं महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपिशाज में दक्षिण कोरिया की ह्योन योंग पार्क से हार गईं।
2: यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको, रेपिशाज एक आम खेल प्रेमी जानता ही नहीं था। 2008 के पहले जब सुशील कुमार भारत के, उन्होंने पहला कांस्य पदक जीता था इसी के बाद, और फिर सब लोग जान गए थे कि रेपिशाज होता क्या है।
0: जी, और अब बात शूटिंग की। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे। आज पहला दिन था इस क्वालिफिकेशन राउंड का, कल होगा दूसरा दिन। और शूटिंग में आज भारत ने शानदार सफलता हासिल की एक और स्वर्ण पदक के साथ। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चिनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी, और फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन से आगे रहकर गोल्ड हासिल किया। भारतीय शूटर काइनन चिनाई ने एशियन गेम्स में जाने से पहले आकाशवाणी से विशेष बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार, और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। What I've seen at least in the camps and in the preparation to the games, that everybody's putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
2: आपने इनकी बात सही सुना होगा, कितने सौ में हैं, ये बात अलग है। उनकी शॉट गन बहुत गरजती है। पिछले गेम्स में भी उन्होंने मेंस गोल्ड पाया था टीम के साथ और व्यक्तिगत कांस्य पदक पाया था। बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी इंग्लैंड से पढ़ाई की है, और इनके खून में है शॉट गन, क्योंकि इनके पिता 2 बार राष्ट्रीय ट्रैप चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं टेनिस की।
0: जी, यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यूसीओ सू की जोड़ी से मुकाबला कर रही है। पहला सेट बड़े कड़े मुकाबले में 6-7 से भारतीय जोड़ी हार गई है, लेकिन दूसरा सेट 1-1 की बराबरी पर चल रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई थी, लेकिन सिंगल्स में सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और मेडल पक्का करने से बस 1 जीत दूर है,
2: और उम्मीद करें ये मेडल भी पक्का होगा। लेकिन सेपक टॉक की बात करते हैं, इसमें क्वाड्रेंट के मुकाबले थे आज, महिलाओं में भी पुरुषों में भी प्रारंभिक मुकाबले हैं। दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं, महिलाएं हार गई और वियतनाम से हारी और फिलीपींस से हारी 2-0 और 2-1, यानी 0-2 और 1-2 के अंतर से। पुरुष जीत गए हैं, उन्होंने लाओ पीपल्स रिपब्लिक को परास्त किया है 15-9, 15-8, यानी 2-0 की जीत के साथ वो अपना ये मैच जीत चुके हैं।
0: और अब हॉकी का मुकाबला, भारत का दूसरा जो सेमीफाइनल अब होने जा रहा है महिला हॉकी का, उसमें भारत का सामना होगा दक्षिण कोरिया से। पहला सेमीफाइनल चीन ने जापान को कड़े मुकाबले के साथ हरा दिया है। अगले अपडेट में
2: जी, लेकिन ये आपको बता दें, बस 5 मिनट हो चुके हैं और अभी भी कोरिया का एक जबरदस्त हमला था जिसको भारत ने नाकाम किया है।
0: जी, तो ठीक 4:30 पर हम अगले अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी अमोदिता के साथ। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा है, बार बार आपको बताने का मन होता है, क्या पता इसके पहले आपने ना सुना हो, सुना हो तो दोबारा खुश हो जाइए। भारत ने आज बहुत सुनहरी सफलताएं प्राप्त की, 4 स्वर्ण पदक आ चुके हैं और एक और खेल जिसमें हमें स्वर्ण पदक की हमेशा उम्मीद होती है क्योंकि हमारी रग रग में बसता है, हॉकी। आज महिलाएं खेल रही हैं, भारतीय लड़कियां इस समय मैदान में हैं, सेमीफाइनल चल रहा है, तीसरा इस समय क्वार्टर चल रहा है। अभी तक मुकाबला दक्षिण कोरिया के विरुद्ध 0-0 है। इसके पहले भारत की लड़कियों ने बहुत ताकत के साथ, बहुत दमखम के साथ, बहुत एक तरफा मैच खेले थे और जीते थे, लेकिन आज इस सेमीफाइनल में सचमुच हमें बहुत जुझारू हॉकी देखने को मिल रही है। स्थिति अभी तक यह है कि भारत का पोजीशन लगभग 60% है, 9 पेनल्टी कॉर्नर मिस चुके हैं लेकिन अभी एक को भी भुना नहीं पाए हैं और दक्षिण कोरिया पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा है और उसके जवाबी प्रत्याक्रमण का सामना भी करना पड़ता है भारत को। फिलहाल अभी वक्त है, देखते हैं क्या होता है।
2: जी, और रेसलिंग की एक बार हम फिर से बात करेंगे। मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनसन को 9-0 से हराया। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इसके पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं।
1: बिल्कुल, और पिछली बार की तरह इस बार, पिछली बार हमें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था और इस बार उम्मीद करते हैं स्वर्ण पदक भी आना चाहिए। जिस हिसाब से इस जब खेल अपने उत्तरार्ध की ओर आ गए हैं, बल्कि कहना चाहिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है, बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो भारतीय टीम बिल्कुल पूरे कहना चाहिए एकदम पुनर्जीवित सी दिख रही है। आज भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक पाए हैं और अभी बहुत उम्मीदें हैं। अभी कंपाउंड आर्चरी में बहुत कुछ आना बाकी है, तो तैयार रहिए, अपडेट्स के साथ रहिए और जहाँ जहाँ से आप जान सकते हो 20वें एशियाई खेलों के बारे में जानते रहिए।
2: जी, टेनिस से अच्छी खबर नहीं है। मेंस डबल्स में यूकी भांबरी और डी सुरेश की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यू सीओ सू की जोड़ी से 6-7, 3-6 से हार गई है। इसके पहले अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और इसके साथ ही मेंस डबल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। अब मिक्स डबल्स में आज यूकी भांबरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: जी, मिश्रित युगल में जो मैच होना है अभी शेड्यूल्ड है, अभी इसकी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का रिजल्ट इस बीच आ गया है। पुरुषों के स्पीड 4 का क्वालिफिकेशन था जिसमें भारत के दीपू मल्लेश 28 वर्ष के हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं और उन्होंने जो 4 प्रयास किए थे उसमें 5.19। हर बार देखना होता है कम से कम समय आपको कब लगा है, तो अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने लेन बी में 5.09 सेकेंड का समय निकाला और इसके साथ ही वो कुल 19 लोगों में 11वें स्थान पर रहे और क्वालिफाई कर लिया। कल इसका क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा।
2: जी अनुपम, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं लेकिन साथ ही कुछ असफलताएं भी रही हैं। जूडो में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गई हैं। वहीं कैनो स्लालम में मेंस कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल में 6 स्थान पर रहे और विमेंस कैनो सिंगल में फाइनल में पल्लवी जगताप अंतिम स्थान पर रही हैं।
1: और एक बार फिर बता दें कि तीसरा क्वार्टर भारत और कोरिया के बीच में जो मैच चल रहा है वो लगभग समाप्त होने को है। 1:46 बचे हैं, यानी लगभग 3 हिस्सा गेम का हो चुका है, 1 हिस्सा बचा है, लेकिन अभी तक गोल रहित ये मुकाबला चल रहा है। भारतीय टीम कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन कोरिया पूरी ताकत के साथ उनका प्रतिरोध कर रही है और गोल अभी तक तो नहीं होने दिया है।
2: जी, और भारतीय लड़कियों के सफर को अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो हम आपको बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो अनबीटन रही हैं और जरा देखिए अनुपम की उज्बेकिस्तान से 19-0 से, इंडोनेशिया से 17-1, थाईलैंड से 20-1, जापान से 3-1 और सिंगापुर से 7-0 से उन्होंने मैच जी जीते।
1: और स्तर कैसे एकदम से बढ़ता है। इस बीच एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है, भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर ले रही है और क्या गोल हो गया है, ये लगता है गोल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ये गोल हो गया है। कितनी अच्छी बात है। अपडेट का समापन हम इस बात के साथ कर रहे हैं कि भारतीय लड़कियां कोरिया के विरुद्ध 1-0 से आगे हो गई हैं। हमें इंतजार है बस रेफरी के इशारे का जी, और ये एक अच्छी खबर भारत के लिए, एकदम उछल पड़ी है लड़कियां ये
2: जी। और ऐसी अच्छी खबर के साथ हम इस अपडेट का समापन कर रहे हैं। ठीक एक घंटे बाद यानी 5:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: नमस्कार, न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। वक्त हुआ है 5:03:24। मेरा नाम है वसीम, मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ रात 8 बजे तक और लव यू जिंदगी 6:05 तक, फिर अपडेट्स और उसके बाद अंदाज़े बयां 6:15 से, उसके बाद हम तुम आप लोगों की जो रिक्वेस्ट 7:10 से, और बीच बीच में जो अपडेट्स आते रहेंगे 5-5 मिनट के, 5:30, 6:30, 7:30। तो इन सारी बातों के दरमियान, इन सारे प्रोग्राम्स के दरमियान कुछ खूबसूरत से गाने, कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट, कुछ आप लोगों के मैसेजेस, कुछ मेरी बातें, बने रहिएगा मेरे साथ। इस शाम को आप और हम और खूबसूरत बनाते हैं कुछ खूबसूरत गानों के साथ एक सिलसिले से। तो चलिए वक्त ना लगाते हुए, देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम लव यू जिंदगी, जो है म्यूजिकली आवाज़ दिल से दिल तक।

5:18 और 3-4-5 सेकेंड्स हो चुके हैं और ये प्रोग्राम है लव जिंदगी। शुभदा जी विजेंद्र गढ़गे अकोला से और प्रकाश शिंदे, हेलो दीपा पालकर जी, यशवंत अनमुदे, अजय साखरे, संजय दर्शन, राकेश माथुर, दीपक देशमुख, राजेंद्र परमार, पंकज मोहर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं लव जिंदगी में। उम्मीद है कि ये जो गाने मैं प्ले कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। प्रकाश थैंक यू सो मच, फिरोज सिगनपुरिया वेलकम वेलकम टू द शो और आप सभी लोगों का। 30 सितंबर MS धोनी, यस तुझ में खोया रहा हूँ मैं, बहुत खूबसूरत ये फिल्म और फोर्स का भी जिक्र है। ऑफकोर्स 2016 को रिलीज़ हुई थी MS धोनी और क्या फिल्म, लव यू सुशांत, मिस यू सुशांत, क्या कहें। और अशोक पाटिल वारली से थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल, थैंक यू आप सभी लोग बने रहिए। और अभी से मुझे रिक्वेस्ट भेजने की

0: और इस वक्त की अपडेट की शुरुआत फिर एक अच्छी खबर से। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा कर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका सामना चीन से होगा।
1: बिल्कुल, और देखने लायक मैच होगा, और देखने लायक मैच तो ये भी था जो बस अभी अभी खत्म हुआ। अगर आप पिछले एक घंटे से अधिक समय से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा अपनी पिछली अपडेट जब हम खत्म कर रहे थे, खत्म करने के कुछ सेकंड्स पहले ही गोल हुआ था, इशिका ने किया था। इसके पहले दो क्वार्टर्स यानी पहले दोनों क्वार्टर्स में दोनों टीमें एक दूसरे को आंकती ही रही थी। भारत ने प्रयास तो बहुत किए थे, कुल मिला के 9 पेनल्टी कॉर्नर पाए थे लेकिन एक में भी गोल नहीं कर पाए थे। कोरिया लगातार प्रतिरक्षण में, खासतौर से उनके गोली ने बहुत अच्छे सेव किए थे। लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें बिल्कुल कहानी पलट गई। भारतीय टीम ने तो ऐसे गोलों की झड़ी लगा रखी थी, आज सचमुच एक कांटे का मैच, उन्हें कांटे की टक्कर मिली। और जो तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ हाफ टाइम के, तीसरा क्वार्टर जब शुरू हुआ उसके बाद का जो हिस्सा है हाफ टाइम पूरी तरह से भारत के नाम ही रहा। और 48वें मिनट में कप्तान सलीमा टेटे ने क्या शानदार फील्ड गोल किया, उन्होंने एक इंटरसेप्ट किया पास को और बहुत तेज़ी के साथ सर्किल में घुसी। सर्किल में घुसने के बाद तेज़ झन्नाटेदार शॉट लगाया, इतना तेज़ था कि एक रक्षक की स्टिक से टकरा कर डिफ्लेक्ट होकर वो गोल पोस्ट पर चला गया। और उसके पहले आज दीपिका का नाम स्कोरर में तो नहीं है लेकिन जो पहला गोल हुआ था उसमें दीपिका ने जो पेनल्टी कॉर्नर लिया था, एक बड़ा अच्छा वेरिएशन किया, उन्होंने पुशर की ओर वापस बॉल को धकेल दिया था और वहां इशिका ने उस बॉल को पकड़कर चकमा दे दिया गोली को और पहला गोल भारत के लिए किया था। यानी भारतीय लड़कियां पहुंच गई हैं फाइनल में, अब बारी है भारतीय लड़कों की। और हम सबके मन में तो उम्मीद है, हॉकी तो हम उड़ते भी चाहते हैं, दो स्वर्ण पदक हमारा मन तो चाहेगा ही चाहेगा।
0: बिल्कुल, और दो ही क्यों, हमारा मन तो और बहुत से पदकों के लिए है। और ये 16 साल में पहली बार हो रहा है अनुपम के एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स हैं। लवली नाम महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में पहुंच गई है गोल्ड मेडल बाउट में, और इसके पहले परवीन हुडा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में, और पुरुषों में अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली थी। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं।
1: बिल्कुल, और कांस्य पदक तो आए हैं, उनको तो गिनना भी है इसमें।
0: जी,
1: तो कुल मिलाकर बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछली बार लवलीना को सिल्वर मिला था, देखते हैं इस बार क्या अपने पदक का रंग बदलती है। आज की उनकी बाउट बहुत मुश्किल थी कहना चाहिए, बस किसी तरीके से उन्होंने इसको पार कर लिया है। अगली लड़ाई पूरी तरह से उनके नाम हो, हम सब की दुआ।
0: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में पुरुषों और महिलाओं की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों ने कुवैत को हराया है 2-0 से। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत दिलाई, और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, और इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया, जिसमें तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह ने अपने अपने मैच जीते। महिला टीम का सेमीफाइनल मुकाबला हांगकांग से होगा,
1: यानी इसमें भी दो पदक हमारे पक्के हो चुके हैं। और खास तौर से स्क्वैश में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, बल्कि सभी लोगों को लग रहा होगा, एक जो परंपरा होती है ट्रांजिशन की, आप याद कीजिए सौरभ घोषाल, दीपिका पलिक्कल और संधू, हरजिंदर सिंह संधू, इन लोगों ने कितना अच्छा खेला था। और अब जो नई पीढ़ी आ गई है, जिसमें हम अभय सिंह की बात करें, अनहत की बात करें और हम तन्वी की बात करें, ये सब कितने अच्छे तरीके से इस स्क्वैश की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और इसके साथ ही गोल्फ के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड में प्रणवी शरत दूसरे स्थान पर रही हैं। दीक्षा डागर, आदित्य अशोक और प्रणवी शरत की महिला टीम पहले राउंड में फिलीपींस के साथ संयुक्त छठे स्थान पर रही। वहीं सप्तक तलवार, वीर अहलावत और युवराज संधू की पुरुष टीम पहले दौर में फिलीपींस और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर रही है। भारतीय गोल्फर कल राउंड 2 के लिए

0: वापसी करेंगे।
1: बिल्कुल, और यहाँ पर देखना होगा अदिति अशोक का जो अनुभव, हमारी सबसे अनुभवी गोल्फर वही हैं, अब वो कितना काम आता है, कितना आगे तक ले जा सकती हैं। अभी बहुत सारे खेल हैं जिनमें पदकों की पूरी पूरी उम्मीद है। आज की बात करें तो आज जरूर भारत के हिसाब से अगर देखें तो दिन लगभग लगभग समापन की ओर है। जितने भारतीय खिलाड़ी थे उन सब की स्पर्धाएं लगभग पूरी हो गई हैं और दिन बहुत अच्छा रहा है। 3 स्वर्ण पदक तो आर्चरी से आए, क्या बात है, आज का दिन भला कौन भूलना चाहेगा। और इसके अलावा शूटिंग में नीरू ने एक बार फिर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा काइनन के साथ।
0: बिल्कुल, एक स्वर्णिम दिन रहा है भारत के लिए। और इसके अलावा ट्रैक साइकिलिंग में लेकिन विमेंस कैरिन के फाइनल मुकाबले में भारत की कीर्ति रंगास्वामी चेक्का चौथे पर रही, और मेंस स्प्रिंट में रेपेशाज में भारत के डेविड बेकहम, एल्का थोचुंगो और रोनाल्डो सिंह लाइतोंजाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
1: तो आपको ये बताते हुए कि 1 घंटे बाद 6:30 बजे हम फिर होंगे आपके साथ। मुदिता के साथ अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। एशियन गेम्स

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:36 हो गए शाम का वक्त, 4-5 सेकेंड्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हैं और इस वक्त आप लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच शुभदा जी, मीना जी वेलकम, और मुबारक हो हॉकी वीमेन टीम इन फाइनल, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। मिच्छामी दुक्कड़म, अच्छा अभी भी बिल्कुल, आपको भी मीना जी थैंक यू सो मच, और ये तो कभी भी कह सकते हैं, बात सही है। और रजनीकांत पाटिल वाधवन और अमित भगत, गुड इवनिंग वैदेही, पंकज माहौर, प्रणव विजेंद्र, आप सभी लोग जितने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ और जितने लोग कॉल कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, वो बात मैं जो कर रहा था आप लोगों से कि कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि वो इंसान जो ज़िंदगी में हमें मिलता है ऐसे कुछ बताने लगते हैं अपना अपना रवैया नज़रिया, लेकिन मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज हैव योर ओपिनियन, आप अपना परसेप्शन बनाइए। आप जब तक उस इंसान से नहीं मिलते, आप दूसरे के कहने पर उस बात का रवैया जो इंसान का होता है, हो सकता है कि जिन्होंने आपको किसी और के बारे में बताया और जिस किसी के बारे में बताया उसे वो इंसान पसंद नहीं हो जो आपसे ये बात कह रहा है। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन देम, हो सकता है आपका उनके साथ जो कमराडरी है वो अलग हो, आपकी दोस्ती उनको अहमियत आपकी बहुत ज़्यादा हो। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, आप उनसे जब तक मिलते नहीं, बहुत आसान है किसी के बारे में गलत सोच लेना, बहुत मुश्किल है किसी के बारे में सही सोच पाना, तब खासकर जब किसी के बारे में कुछ ऐसा कहा जाए जो आपको लगे कि सही होगा लेकिन वो नहीं होता। सो ये लाइफ के कुछ फंडे हैं, जो तरीके तौर तरीके, इसको बहुत सिंपल रखना लाइफ को, बहुत सिंपल। जैसे अब देखिए घास को अगर देखा जाए तो घास अगर देखे आप तो वो शेर से नाराज़ नहीं होगा लेकिन वो हिरन से ज़रूर होगा। बात नज़रिए की है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्टेडियम मेरे साथ बने रहिए कुछ खूबसूरत गानों का ये सिलसिला, क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं मुझे बताइए 6576601071 पर। स्टेडियम और ये है प्रोग्राम लव जिंदगी आप लोगों के साथ, 5:38 दिल से दिल। Ooh,

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: बिल्कुल, फोर्थ फिल्म के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था हमने और उसका गाना हमने आपको सुना दिया है। प्रकाश, थैंक यू सो मच, आप बने हुए हैं, 15 साल हो गए हैं रिलीज को और बहुत ही खूबसूरत से इसके गाने। ऑफ कोर्स मैं आपको MS धोनी के भी गाने ज़रूर सुनाऊंगा उस फिल्म के। हम सपने, हर सपने की होती है एक अनकही कहानी, बिल्कुल सही बात है। और पता है आपको एक कमाल की बात, वैसे ज़िंदगी को लेकर ये प्रोग्राम बस 1-2-3 गाने में मुकम्मल होगा, फिर न्यूज़ अपडेट होंगे, उसके बाद अंदाज़े में। और मुझे आज जगन्नाथ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कॉल किया था, या जगदीश जी, कन्फर्म कर सकते हैं आप एक बार कॉल करके। और उन्होंने कहा था कि हमें गज़लें भी सुनना है और शेर व शायरी भी सुनना है, तो हम ज़रूर वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे और हर किसी की। लेकिन पता है कि कौन सा वहम सबसे बड़ा है, आपको पता है कौन सा वहम सबसे बड़ा है? चलो भेजो मुझे 8657661071। और आप लोग इसे ज़िंदगी के नज़रिए से देखना और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, कीप इट लाइट, ठीक है? आप बने रहिए मेरे साथ और सुनिए ये खूबसूरत गाने। और इस फिल्म को भी तकरीबन 4 साल पूरे हो गए हैं जिस फिल्म का गाना अभी आप सुनने वाले हैं। मिलता हूँ आप लोगों से अब सीधे अंदाज़े बयां में, लेकिन आप अपना आंसर मुझे ज़रूर भेज सकते हैं, मैं जिक्र करूँगा उसका। स्टे ट्यून्ड।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: जैसे मैंने कहा था कि 6:05 पर अपडेट्स होंगे और उसके बाद 6:15 पर मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक बार प्रोग्राम अंदाज़े बयां लेकर। उसके बाद 6:30 फिर से अपडेट होगा फॉर 5 मिनट्स एज यू नो, और वो एशियन गेम्स को लेकर। तो उसके लिए भी आप लोग अब बने रहिएगा आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। फिलहाल एक और गाना जो मैं आप लोगों की तरफ पेश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा, तो स्टे ट्यून्ड, इसे सुनिए और मिलते हैं हम आपसे 6:15।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7 तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
2: छः बजकर तकरीबन 16 मिनट हो गए हैं और न्यूज़ ऑन एयर ऐप 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। ये प्रोग्राम है अंदाज़े बयां और मैं आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पर बिल्कुल लाइव। वसीम है मेरा नाम और शाम का ये वक्त बहुत ही खूबसूरत। वैसे कौन सा पहर आपका सबसे बेहतरीन लम्हा आपको लगता है कि दोपहर शाम का ये खूबसूरत लम्हा या सुबह सवेरे डॉन टू डस्क जैसे कहा सकते ये कहते हैं या रात या देर रात जो भी हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत सुकून इत्मीनान खुशी आराम तो खैर वक्त का कोई कहाँ ठिकाना होता है कहाँ भरोसा कहाँ कब कैसे कोई काम आ जाए और आपको निकलना पड़े। लेकिन उनसे इफ्स एंड बट्स के अलावा आपको कहीं ऐसा मौका मिलता हो तो कौन सा पहर होगा कभी सोचा है इस बारे में? सोचा नहीं तो सोचेगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल मैंने जिस बात के जिक्र किया था कि जीवन में सबसे बड़ा वहम क्या है, कौन सा भ्रम या कौन सा, इस पर प्रकाश ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन का सबसे बड़ा वहम यह भ्रम यह है कि मैं हमेशा रहूँगा और ये संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? अच्छा, बिल्कुल सही तो कहा है इन्होंने, कोई दो राय नहीं है इसमें और ये बात तय है। लेकिन बहुत समय पड़ा है, यह वहम सबसे बड़ा है। कहीं ना कहीं तुम्हारी बात के इर्द गिर्द है ये बात प्रकाश। थैंक यू सो मच अशोक, आपका भी शुक्रिया। और फिरोज़ थैंक यू, आपने भी जो मैसेज किया। चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आप और हम शुरू करते हैं प्रोग्राम अंदाज़ बयां कुछ खूबसूरत गज़लों के साथ और उसके बाद शेर व शायरी का सिलसिला भी रहेगा। लेकिन ये गज़लें जो मुकम्मल होंगी उसके बाद अपडेट होगा और फिर आप और हम एक बार फिर मिलेंगे। तो चलो शायरी सुना ही देता हूँ कि दुआएँ मांग कर हासिल करने वाले लोग, दुआएँ मांग कर हासिल करने वाले लोग दवाएँ खा कर भुलाने पड़ते हैं अक्सर। होता है ऐसा, हाँ या ना? ऐसा होता है नहीं ना? आप अपना नज़रिया बताइए मुझे 8657661071 पर। तब तक गज़लों को अपना काम करने दीजिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारतीय चुनौती के हिसाब से देखें तो लगभग अवसान की ओर है। लगभग सभी स्पर्धाएं पूरी हो चुकी हैं। बहुत शानदार दिन रहा।

0: ऐसा दिन जिसकी उम्मीद हर खेल प्रेमी करता है और हर खिलाड़ी करता है। बहुत ही शानदार दिन रहा है, लेकिन अभी एक मुकाबला चल रहा है टेनिस में। टेनिस में आज सुमित नागल ने अपना मैच जीत लिया है। इसके अलावा डबल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और यूकी भामरी हार गए थे, लेकिन यूकी भामरी अगर दो मैच एक साथ हो तो बीच में गैप देना होता है, इसलिए उनका मैच अब चल रहा है, इस समय ऑन है। क्या स्थिति है जानते हैं मुदिता से।
1: जी, टेनिस के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का मुकाबला चाइनीज ताइपे के सू वेसिए और चुन सिन सिंह की जोड़ी से जारी है, और पहला सेट भारतीय जोड़ी 3-6 से हार गई है, लेकिन दूसरे सेट में अभी वो 1-0 से लीड कर रही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मिक्स डबल्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। 2023 में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में हरा कर खिताब जीता था,
0: तो शायद वो दास्तान इनके रैकेट में और दम भरेगी। वापसी अच्छी की है, देखते हैं क्या होता है, अगली अपडेट में हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन अब चर्चा है, जाहिर सी बात है पूरे देश में चर्चा है, हम एक बार बार बार करना चाहेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, 3 स्वर्ण पदक आए हैं आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में। कंपाउंड की स्पर्धाएं थी, कंपाउंड में भारत जबरदस्त फोर्स बन चुका है। आज 3 स्पर्धाओं में भारत उतरा, 3 स्वर्ण पदक पाए और तीनों में डिफेंडिंग चैंपियन भी था।
1: जी बिल्कुल, और शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की है। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और कतर और चीन से आगे टॉप पर रही ये जोड़ी। ट्रैप शूटिंग में भारत का तीसरा मेडल था। इसके पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर, और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया है। लेकिन शूटिंग में ही 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
0: और कुश्ती में भी बहुत अच्छी खबर आई है। आज कुश्ती में ग्रीको रोमन की स्पर्धा थी और महिलाओं में निशा थी। निशा 68 किलोग्राम भार वर्ग में रिपेचास में पहुंची थी, लेकिन वहां पर परास्त हो गई। और ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम में भारत के सुनील कुमार वो जापान के ताइजो योशिदा से परास्त हुए। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें रिपेचास होता क्या है। होता यह है कि अगर आप अपनी कुश्ती हार जाते हैं तो भी आपको मौका मिल सकता है। अगर आप जिससे हारे हैं वो बंदा अगर फाइनल तक पहुंचता है तो जितने लोग उससे हारे हैं उनके बीच में फिर से मुकाबला होता है और उनमें जो विजेता होता है उसको कांस्य पदक के लिए भिड़ने का मौका मिलता है। तो इसके चलते सुनील को फिर मौका मिला, निशा को भी था, वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सुनील ने तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान ज़ादा को 9-0 से टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर आसानी के साथ परास्त किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया।
1: जी, और बॉक्सिंग में भी भारत के लिए आज अच्छा दिन रहा। मुक्केबाजी में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। और 16 साल में अनुपम, ये पहली बार हो रहा है कि एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर होंगे।
0: बिल्कुल, हम पिछले बार की बात करें तो पिछली बार 4 पदक थे, एक रजत पदक था लवलीना का जिसको सब लोग चाहेंगे। आज की बाउट बहुत बहुत मुश्किल थी उनके लिए, बड़ी मुश्किल से 3-2 के अंतर से वो जीत पाई, लेकिन स्वर्ण पदक में निशाना साधेंगी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़े। और इसके पहले 2023 की अगर हम बात करें, 22-23 में जो हुआ था, 22 के खेल 23 में हुए थे, प्रीति पवार को कांस्य पदक मिला था, निखत जरीन को मिला था, नरेंद्र बेरवाल को मिला था। लेकिन इस बार 3 तो हमारे फाइनल में ही खेल रहे हैं, यानी हमें पदक और मिलने हैं और 3 कांस्य पदक तो आ ही चुके हैं।
1: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीम्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और साथ ही मेडल भी पक्का कर लिया है। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, वहीं सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: और हॉकी की बात किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। अभी हॉकी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और भारत का जो मुकाबला था दक्षिण कोरिया के साथ भारतीय लड़कियों का, जबरदस्त मुकाबला। हाफ टाइम तक तो बिल्कुल बराबरी पर था, लग रहा था इतने गोल ठोकने वाली भारतीय टीम क्या करेगी, इसमें इतनी बड़ी चुनौती मिल रही। लेकिन उसके बाद जो दूसरा हाफ था यानी कि तीसरा

0: क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, उसमें भारतीय लड़कियों ने जबरदस्त खेल दिखाया, 2-0 से बढ़त हासिल की और इंशिका ने पहला गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से। उसके बाद कप्तान सलीमा टेटे ने फील्ड गोल किया था, 2-0 से भारत जीत गया है। और हॉकी में कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसकी चर्चा अगली अपडेट में
1: जी। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, ठीक 7:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स.
2: नमस्कार, न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. मैं हूं वसीम आप लोगों के साथ और प्रोग्राम हम तुम में आप लोगों का स्वागत है. बड़े अच्छे तरीके से आप लोग मुझे तकरीबन 6:15-6:30 के आसपास से जो ये रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते वो सिलसिला रुकता ही नहीं है. थैंक यू सो मच मीना जी इतनी आपकी रिक्वेस्ट के लिए और संजय दर्शन जी, शुभदा जी ज़रूर और चेतन कुमार, आप सभी लोग जो मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं ज़रूर प्ले करूँगा जितनी मुमकिन होगी उतनी सब. आकांक्षा थैंक यू सो मच और अजय, अरविंद, कुलकर्णी थैंक यू सो मच, आप जितने भी लोग इस वक्त बने हुए हैं हमारे साथ और ये वक्त जो हम तुम मिलाए हमें इसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि खुल कर जिएं और ये गानों को एंजॉय करें और साथ ही साथ वो बातों का सिलसिला जारी रखें. लेकिन हाँ, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए वो फिल्म सरफरोश थी जिसमें आमिर खान ने वो डायलॉग कहा था और आप लोग ने उसे रिकन्फर्म किया, सो थैंक यू सो मच. फिलहाल हैप्पी बर्थडे शान, क्या शान है आपकी, आपके गानों की, आपके आवाज़ की, आपके अंदाज की. हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, पूरे लिसनर्स और टीम की तरफ से. इसी तरह गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और एंटरटेन करते रहिए. स्टे ट्यून्ड मेरे साथ, ये प्रोग्राम है हम तुम.

0: नमस्कार, आज की अंतिम अपडेट 20वें एशियाई खेलों पर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो अभी तक रह गई क्योंकि ये मैच अभी तक चल रहा था। टेनिस में मिश्रित युगल में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले, ये भारत की ओर से खेल रही थी। बस अभी अभी मैच समाप्त हुआ है और इसमें भारतीय जोड़ी ने जीत हासिल की 6-3, 6-4 सीधे सेटों में। और अब बात करेंगे आज के दिन की। शानदार दिन रहा है, शुरुआत कैसी रही, किसने की, कौन कौन से पदक है, आपको पता है लेकिन बार बार सुनना अच्छा लगेगा, मुदिता बताएंगी।
1: जी बिल्कुल अनुपम, और आज की सुबह ही शुरुआत हुई है स्वर्ण से, यानी स्वर्णिम सुबह रही है आज की। और ये हुआ था भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत। चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कंपाउंड मिक्स टीम का गोल्ड मेडल भी आया, चिकिता तानिपार्थी और साहिल जाधव ने उसे जीता। और तीसरा गोल्ड मेडल कंपाउंड आर्चरी में आया भारतीय पुरुष

0: टीम का, जिसमें साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की तिकड़ी ने फाइनल में चीन को हराया।
1: जी, तीन से पेट नहीं भरता। तो चौथा गोल्ड मेडल आया शूटिंग से। शूटिंग में कल की जो हमारी हीरोइन थी, कहना चाहिए नीरू अडांडा, उन्होंने आज अपनी जोड़ी बनाई अनुभवी काइनन चेनाई के साथ। और डबल ट्रैप में ये मिक्स स्पर्धा थी और इसमें इन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2 और 3, इन दोनों में 10 में 10 निशाने, कमाल की बात। कुल स्कोर इन्होंने बनाया 34, जो एशियन रिकॉर्ड है वो अभी इसी साल कुवैत ने बनाया था 30 का, उससे 4 ज्यादा। और कुवैत इस बार भी था, वो दूसरे स्थान पर आया। आगे रही भारतीय जोड़ी, स्वर्ण पदक आज का चौथा।
0: और बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनगस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल बाउट में पहुंची। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को हराया। परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल, अब तक अगर हम पिछले गेम्स की बात करें तो कुल 4 पदक थे, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। इस बार 6 पदक होने और देखना ये है, क्या बात है, अगर 3 स्वर्ण हो जाए तो क्या कहना, भारतीय झोली बहुत बड़ी हो जाएगी। किस्मत अगर मौके दे तो उसको पूरी ताकत से भुला लेना चाहिए, ये साबित किया सुनील ने आज ग्रीको रोमन कुश्ती 87 किलोग्राम भार वर्ग में, जहां पर वो हार गए थे। लेकिन चूंकि उनके विपक्षी फाइनल में पहुंचे तो उनको एक मौका और मिला रिपचैस में, जिसको भुनाते हुए उन्होंने आखिर में तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान सोदा को 9-0 के स्कोर से परास्त किया टेक्निकल सुपीरियरिटी में, और भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया, आज का 3रा कांस्य पदक।
0: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के साथ ही मेडल भी पक्के कर लिए हैं। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, पुरुष टीम का होगा मलेशिया से और महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: और हॉकी के बिना बात अधूरी रह जाएगी, हॉकी जो हमारे साथ खून का रिश्ता है जिसका। हॉकी में भारतीय महिलाओं ने भी गजब किया है, पिछली बार उनका कांस्य पदक था, इस बार वो फाइनल में पहुंच गई हैं। शानदार, इस बार गोलों की झड़ी लगाई थी आज, लेकिन वो झड़ी तो रुकी लेकिन जीत का सिलसिला नहीं। पहले दोनों क्वार्टर बिना गोल के रहे, लगा बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि पेनल्टी कॉर्नर 9 कमाए थे लेकिन उसको गोल में बदल नहीं पाई थी। लेकिन तीसरे क्वार्टर के खत्म होते होते भारत ने जो बढ़त हासिल करनी शुरू की, सबसे पहले इंशिका ने गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से, बिल्कुल नए वेरिएशन के साथ गोल हुआ था, बस देखने लायक था ये। और उसके बाद सलीमा टेटे ने बस 4 मिनट बाद एक फील्ड गोल, शानदार फील्ड गोल किया जो डिफ्लेक्शन के साथ चला गया गोल पोस्ट के भीतर। भारत 2-0 से इस मैच को जीत लिया। 2 अक्टूबर के दिन फाइनल मैच, भारत के स्वर्ण के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए।
0: जी बिल्कुल, लड़कियों ने स्वर्ण के लिए अपनी छलांग लगा दी है। अब कल बारी है मेंस हॉकी टीम की, जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगी। एक और सेमीफाइनल कल खेला जाने वाला है क्रिकेट का, मेंस क्रिकेट का, जिसमें भारत का सामना होगा श्रीलंका से।
1: तो कुल मिलाकर आज बस यहीं तक, अब आज के अपडेट तो समाप्त होते हैं, लेकिन कल हमारे साथ रहना मत भूलिएगा। कल सुबह 9:30 बजे हम लोग फिर आपके साथ होंगे।
0: जी, और उसके पहले आज रात 10 बजे हमारा डेली अपडेट का कार्यक्रम, जिसमें हम पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके प्रदर्शन के बारे में, वो सुनना मत भूलिएगा। और कल सुबह 9:30 बजे हम फिर से आवरली अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो अब मुझे यानी मुदिता और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026, आईटी नगोया।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और ये प्रोग्राम चल रहा है हम तुम और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए। मैं हूँ वसीम। वैसे बहुत ही खूबसूरत सा थॉट है कि जज्बात उस OTP की तरह होता है जो वक्त गुजरते ही इनवैलिड हो जाता है। तो जज्बात की कदर करिए, ये जज्बात है, जस्ट बात नहीं। फिलहाल ये गाने आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम हम तुम में जय म्यूजिक के लिए आज दिल से दिल तक।

चलिए अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है और क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये ख्याल भी अपनी जगह है कि ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती, कौन ज़्यादा बेबस है, लेकिन वक्त के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ बहुत खूबसूरत गानों के साथ और इनका जो लुत्फ उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। स्टे ट्यून्ड एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।

0: गेहूं के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्व

0: पूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू

0: पांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oilseeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28, Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard

0: बेस आईजी नगोया।
1: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
2: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
1: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ। मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
3: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने

0: फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का तीसरा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
1: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
2: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
1: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज जन्नाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य, तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
0: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गयी। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीबुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
1: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल

0: विरासत नई पौज ने बखूबी संभाल ली है और जोशना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वैश के सितारों की कहानी।
1: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकेंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेंजुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए। लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिंह से हार गए थे 3-6, 4-6 से। लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
1: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गयी।
0: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
1: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गयी। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
0: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेन्स टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर है। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
0: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश यमुनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा,

0: और मालेमंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
1: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाईं। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
0: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
1: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
0: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: मुलिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के 2 बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे।

0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम

में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के इस पहर स्वागत है आपका गजलों के गलियारे में। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, प्रोग्राम है रंगे महफिल और आज की महफिल है हमारे अपने जगजीत साहब के नाम। तो आंखें बंद कर सिर तकिए पर रख कर पूरे एक घंटे एक ऐसी आवाज़ को सुनने को तैयार हो जाइए जिसमें बसती हैं गज़लें, जिनसे बुनती हैं गज़लें, जो गज़लों का अपना घर है। स्टेशन आकाशवाणी का FM रेनबो।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

देखिए ये तो है कि जगजीत साहब की आवाज़ और गज़लें दिलों को छूकर सीधा हमारे रूह में उतर जाती हैं। ऐसी ये गज़ल आपके लिए पेश है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जगजीत साहब की गायकी सिर्फ आवाज़ का जादू नहीं है, बल्कि एहसासों का एक ऐसा समंदर है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है। और उस खामोशी में जब भी उनके सुर गूंजते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना जख्म धीरे से मुस्कुरा उठा हो।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गुजरात आतंक रोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत की 2-0 से अजेय बढ़त। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो आगे भी यूं ही बने रहिए हमारे अगले प्रोग्राम जीरो आर शो में और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

की पेशकश के साथ जीरो आवर शो प्रोग्राम संपन्न होता है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। यही आपसे गुजारिश के सुनते रहिए FM 102.4।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी मंजूरी मिली। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित होगा। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत की 2-0 से अजेय बढ़त। और मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम माहे, कर्नाटका के आंतरिक क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल्ला में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

आपने ट्यून किया है 102.6 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो। वक्त सुहानी रात कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म खामोशी के इस गीत के साथ। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

0: si Terry Bolly. तेरी तेरी ची नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

कार्यक्रम की इसी आखिरी पेशकश के साथ आपसे बस इतना ही कहना है कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए FM।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी मंजूरी मिली। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित होगा। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत की 2-0 से अजय बढ़त। और मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, कर्नाटका के आंतरिक क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर वक्त है भुलाए ना बने कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो हमने लिया है फिल्म लम्हे से।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, और इसी गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत अनुमति। बस यही आपसे गुजारिश है कि आप अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, भूले से भी किसी का दिल ना दुखाइए, और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, संगीत में जिंदगी सुनाई देगी।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी दी। दिल्ली के लिए आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों की हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वस्त्र क्षेत्र में नई तकनीकों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों की प्राचार्याओं के साथ छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैठक की। एशियाई खेलों में कल तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक मिला। महिला हॉकी टीम भी फाइनल में पहुंची। कुल 60 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंचा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। और मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल्ला में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है ठीक 4 बजकर और हुए हैं पूरे 10 सेकंड। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण और दिल्ली के लिए आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी मंजूरी दी। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वस्त्र क्षेत्र में नई तकनीकों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की प्राचार्यों के साथ छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैठक की। एशियाई खेलों में कल तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक मिला। महिला हॉकी टीम भी फाइनल में पहुंची। कुल 60 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंचा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। और मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकलाम में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ और समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30

बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण